0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर

0: ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृतियों और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरा सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आहे आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। 6:05 होत आहेत। ऐकूया मंगल गीतांचा कार्यक्रम मंगल प्रभात। सुरुवातीला वैशंपायन गुरुजी यांच्या स्वरात वैदिक मंत्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने

0: पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़िमिन की जोड़ी ने ATP टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
0: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pehelgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Irina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pehelgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
7: The New Delhi Declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The attack was later traced to terrorists backed and trained in Pakistan. The declaration also called for action against the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. BRICS leaders also urged the member nations to ensure zero tolerance for terrorism and reject double

0: सकाळचे 9:30 आहेत. ऐकूया कार्यक्रम सामुदायिक गायनपाठ भाषा नेपाळी.
1: नमस्ते सर.
2: नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे एक देशभक्ति गीत नेपाली भाषा में. सीखोगे ना?
1: जी सर.
2: ये गीत सिखाने के लिए आज हमारे साथ हैं दीदी सीमा झा.
1: नमस्ते मैडम.
3: नमस्ते बच्चों. बच्चों आप सभी कैसे हो? ठीक हो ना?
1: जी हाँ.
3: आप सभी तातंगचेन सेकेंडरी स्कूल गांतोक से आए हो ना?
1: जी मैडम.
3: बहुत अच्छे बच्चों, सबसे पहले आप सभी अपनी अपनी कॉपी और कलम निकाल लें, क्योंकि हम सबसे पहले गाने के बोल लिखेंगे. तैयार हैं आप सब?
1: जी हाँ.
3: बच्चों इस गीत को लिखा है श्री रुद्र पौड़याल जी ने और इस गीत के संगीतकार हैं श्री सुमन कार्की जी. तो बच्चों अब हम गीत के पहले स्थाई को लिखेंगे, तो लिखना आरंभ कीजिए. माथी माथी
1: माथी माथी
3: हिमाल को
1: हिमाल को
3: सेतो मुकुट लाई
1: सेतो मुकुट लाई
3: तला तला समुद्र ले
1: तला तला समुद्र ले
3: पाँव पखाली
1: पाँव पखाली.
3: बच्चों आप सभी ने लिख लिया?
1: जी हाँ.
3: अब मैं आप सभी को इसका अर्थ बताती हूँ. इसका अर्थ है हिमालय के ऊपर बर्फ रूपी सफेद मुकुट शोभायमान है और नीचे पैर पखारता सागर, दोनों ही बहुत सुंदर दिखते हैं. अब हम स्थाई की दूसरी पंक्ति को लिखेंगे. लिखना शुरू कीजिए. सुंदर श्रेष्ठ
1: सुंदर श्रेष्ठ
3: बनी बसे को
1: बनी बसे को
3: योदेश
1: योदेश
3: विश्व भरी
1: विश्व भरी
3: गर्व बोकी
1: गर्व बोकी
3: बसने
1: बसने
3: मेरो देश
1: मेरो देश.
3: इसका अर्थ है सुंदर और विशाल रूप में बसा हमारा यह भारत देश का सिर विश्व भर में हमेशा ऊंचा रहा है. अब हम पहले अंतरे की पहली पंक्ति को लिखेंगे, तो लिखना आरंभ कीजिए. चाप गुरास
1: चाप गुरास
3: सुनाखरी
1: सुनाखरी
3: फुलने पहाड़
1: फुलने पहाड़
3: अन्न
1: अन्न
3: फल फूल
1: फल फूल
3: भरने
1: भरने
3: सौम्य मधेश
1: सौम्य मधेश.
3: इस पंक्ति का अर्थ है यहाँ के पहाड़ों पर जहाँ चाप गुरास बुरुंश और ऑर्किड और भी कई फूल हैं जो शोभायमान है, वहीं समतल सौम्य भूमि अन्न फल फूलों से भरी पड़ी है. अब हम पहले अंतरे की दूसरी पंक्ति लिखना आरंभ करेंगे. लिखना शुरू कीजिए. होचो अलगो
1: होचो अलगो
3: गोरो
1: कालो
3: सबई हमरे मांचे
1: सबई हमरे मांचे
3: एकता मा
1: एकता मा
3: बांधिए
1: को
3: भारतीय
1: भारतीय
3: मांचे
1: मांचे.
3: इसका अर्थ है हमारे यहाँ नाटे लंबे गोरे काले सभी तरह के लोग हैं, मगर फिर भी हम भारतवासी एकता रूपी धागे में बंधे हैं. बच्चों अब हम दूसरे अंतरे की पहली पंक्ति को लिखेंगे. गंगा बनी
1: गंगा बनी
3: हिमाल को
1: हिमाल को
3: बगने
1: बगने
3: नदी
1: नदी
3: नाला
1: नाला
3: भिजाउंदे
1: भिजाउंदे धरती सबै
3: बंचा
1: बंचा
3: उर्वरा
1: उर्वरा.
3: लिख लिया आप सभी ने?
1: जी मैडम.
3: तो बच्चों इसका अर्थ है हिमालय से सभी नदी नाले गंगा बनकर बहती है और फिर बहने के क्रम में यहाँ की धरती को भिगोकर उर्वरा यानी कि उपजाऊ बनाती है. अब हम दूसरे अंतरे की दूसरी पंक्ति को लिखना आरंभ करेंगे. जाता धर्म
1: जाता धर्म
3: आपने खुशी
1: आपने खुशी
3: जस्तो माने पनी
1: जस्तो माने पनी
3: हामी सबै
1: हामी सबै
3: भारतीय
1: भारतीय
3: भारत
1: भारत
3: हाम्रो भूमि। इस पंक्ति का अर्थ है, यहाँ के लोग अपनी खुशी से अपने जात और धर्म को मानते हैं और हम सब भारतीय हैं और भारत हमारी भूमि है। तो बच्चों, गाने के बोल तो हमने लिख लिए, अब इस गीत को गाना सीखोगे ना बच्चों?
1: जी मैडम।
3: आप सभी को इस गीत को गाकर सिखाने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री सुमन कार्की जी। आप सभी सुमन कार्की सर का अभिवादन कीजिए।
1: नमस्ते सर।
4: नमस्ते बच्चों, आइए सबसे पहले हमारे साथ सा बोलिए। सा बहुत अच्छा। अब इस गीत को एक बार मैं गाऊंगा, फिर आप सब दोहराएंगे। तैयार हैं?
1: जी।

बहुत अच्छा। बच्चों आपने एक गीत तो सीख लिया, अब इस गीत को तबले के साथ गाइए। ये गीत कारवा ताल में निबद्ध है, मात्रा है 8। ठेका शुरू कीजिए, 1 2।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री इस समय भागीदार देशों के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कॉपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
0: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, आज सम्मेलन के अंतिम दिन एजेंडे में क्या कुछ खास है?
2: देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आज सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदार देशों के नेताओं का भारत मंडपम में गर्मजोशी से स्वागत किया और बाद में ग्रुप फोटो के लिए भी सभी एकत्रित हुए। इस सत्र के बाद दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और इराक के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। आपको बता दूं कि भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स तक रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों से शुरू हुआ यह समूह अब कुल मिलाकर 21 देशों का हो गया है, जिसमें सदस्य और साझेदार देश शामिल हैं। और भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में जो है दोगुना ज्यादा बढ़ा है। लगता है कि ब्रिक्स समूह जो है भारत के लिए आर्थिक
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। कल सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रेंज स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। ये ओडिशा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। इन नेताओं में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली

0: स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलेना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ऍप सहित आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 11:05 झाली आहेत। ऐकूया आपली आवड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स

0: इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
0: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
0: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रसार भारतीच्या वेब्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपसहित आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 1:05 झाली आहेत। ऐकूया चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीतबहार। सुंदर माझं घर या चित्रपटातलं गीत ऐकूया। कल्याणी साळुंखे, मनीषा जोशी, मधुराणी गोखले प्रभुलकर यांनी गायलेलं, गीतकार गुरु ठाकूर आणि संगीतकार मधुराणी गोखले प्रभुलकर।

0: रासायनिक ऊर्जेत रूपांतरित करतात. कार्बन डायऑक्साईड, पाणी आणि सूर्यप्रकाश यांच्या सहाय्याने त्या आपले अन्न तयार करतात आणि याच प्रक्रियेत वातावरणात ऑक्सिजन सोडला जातो. आपण श्वास घेतो, प्राणी श्वास घेतात, पक्षी, कीटक आणि सूक्ष्मजीव देखील श्वसन करतात. या सर्वांच्या जीवनामागे वनस्पतींचंही योगदान आहे. मित्रहो, एखाद्या जंगलात उभे राहून पहा, तिथे एक फक्त झाड नसते, ते कोणासाठी अन्न असते, कोणासाठी घर असते, कोणासाठी सावली असते, तर कोणासाठी जीवनाचा आधार असते. गवत खाणाऱ्या शाकाहारी प्राण्यापासून सुरुवात झालेली अन्न साखळी पुढे मांसाहारी प्राण्यांपर्यंत पोहोचते. म्हणजेच वनस्पतींमध्ये साठवलेली सूर्याची ऊर्जा संपूर्ण अन्न साखळीमध्ये प्रवाहित होते. धान्य, डाळी, फळे, भाज्या, तेलबिया, मसाले, चहा, कॉफी, औषधी वनस्पती आदी आपल्या दैनंदिन जीवनातील असंख्य गरजा वनस्पती पूर्ण करतात. इतकंच नाही तर कापूस, ताग, बांबू, लाकूड, रबर यासारख्या असंख्य नैसर्गिक संसाधनांचे मूळही वनस्पतींमध्येच आहे. वनस्पती आपल्याला अन्न देतात, प्राणवायू देतात, पण त्यांचे कार्य इथे थांबत नाही. त्या वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि कार्बनचे संचयन करतात. म्हणूनच हवामान बदलाच्या आव्हानात वनस्पती आणि जंगलांचे महत्व अत्यंत मोठे आहे. आपण मनुष्य म्हणून कल्पना करा, जर पृथ्वीवर वनस्पती नसत्या तर ना अन्न साखळी राहिली असती, ना अनेक प्राण्यांचे अस्तित्व, ना पुरेसा ऑक्सिजन, ना हिरवाई, आणि कदाचित पृथ्वीवरील आजची जीवसृष्टी अस्तित्वात आली नसती. म्हणूनच वनस्पती म्हणजे पृथ्वीच्या जीवनचक्राचा पाया आहे. आपण एखादे झाड लावतो तेव्हा आपण केवळ एक रोपटे लावत नाही, तर आपण भविष्यातील अन्नाची शक्यता निर्माण करतो, अनेक जीवांना आश्रय देतो आणि जीवनाला श्वास देतो. म्हणून लक्षात ठेवूया की वनस्पती जगल्या तर जीवसृष्टी जगेल, वनस्पती समृद्ध झाल्या तर पृथ्वी समृद्ध होईल. वनस्पती पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचे त्याचमुळे अधिष्ठान आहेत. त्यांचे संवर्धन म्हणजे पृथ्वीवरील जीवनांचे संवर्धन. मित्र हो, आपण हे बऱ्याचदा ऐकतो परंतु कृतिशीलता याबाबत कमी पडते. आपण महाराष्ट्रातील काही उदाहरणं पाहूयात. पर्जन्य छायाच्या प्रदेशातील राळेगण सिद्धी येथे अण्णा हजारे यांनी माथा ते पायथा या पद्धतीने तीव्र उताराच्या डोंगरावरील पाणी, डोंगरावर लावलेल्या जंगली वृक्ष, बोर, बाभूळ, सीताफळ यांच्यासारख्या वृक्षांनी लागवड करून ते पाणी थांबवलं. गावातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या त्यातून कायम सुटलीस, त्याचबरोबर गावातील जमिनीतील भूजल पातळीतही वाढ झाल्यानं सिंचनाची व्यवस्था तिथल्या शेतकऱ्यांनी उभी केली. अवघ्या गावाच्या सहकार्याने वृक्ष लागवडीने राळेगण सिद्धीचं रूपांतर जगामध्ये राळेगण सिद्धीमध्ये झालं आणि ते आत्मनिर्भर सिद्धी गाव अवघ्या गावाचं आणि अवघ्या शहराचं आणि देशाचं एक आकर्षण केंद्र बनलं. हिवरे बाजार या छोट्याशा गावाला स्वयंपूर्ण बनवण्याचंही कार्य सरपंच पोपटराव पवार यांनी हिरवळीचं वनस्पतींचं आच्छादन वाढवून करून दाखवलं. महाराष्ट्राच्या या प्रेरक कथा आपल्याला कृतिशील करतील हा विश्वास मला वाटतो. चला आपणही आपल्या परिसराला पर्यावरण स्नेही बनवण्याचा संकल्प करूयात. धन्यवाद.
1: श्रोते हो, आताच आपण परिसर या कार्यक्रमामध्ये वनस्पती पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचं अधिष्ठान या विषयाचा भाग पहिला ऐकलात. लेखन निवेदन होतं प्राध्यापक डॉक्टर सुनील मोडक यांचं. सादर करते सदानंद कामडी. ही आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती होती. बरे तर श्रोते हो, आजच्या भागामध्ये एवढंच. भेटूयात उद्याच्या कार्यक्रमामध्ये. टेक केअर अँड बाय बाय.
2: परिसर कार्यक्रम पुनःप्रसारित करण्यात आला आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. दुपारचे 2:15 वाजत आहेत. दोपहर समाचार बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा. प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी. प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की. रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की. गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई. राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी. इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता. और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
4: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
3: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
4: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
4: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
3: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
4: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
4: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
3: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
4: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
3: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद है। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
5: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा

0: रहा है जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
0: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
2: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दो दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अलसीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
3: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
4: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
5: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गीर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेले ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकत होतात नभोनाट्य, एका चळवळीचा शेवट. लेखिका प्रियंवदा करंडे, यातील भूमिका आणि कलावंत बबन प्रमोद टिल्लू, मीना धनश्री करमरकर, बाळ यशवंत भिडे आणि आई मेघा गवांदे. सादरकर्त्या सुषमा हिप्पळगावकर. ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राची निर्मिती होती.
1: नभोनाट्य, एका चळवळीचा शेवट, आत्ताच आपण ऐकलात. AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आपण ऐकत आहात. आता प्रसारित करत आहोत हिंदी कार्यक्रम विविधा.
2: शब्द जब भावनाओं का रूप लेते हैं तो कविता जन्म लेती है, और जब वही कविता जीवन के अलग अलग रंगों, संवेदनाओं और अनुभवों को अपने भीतर समेटती है तो वह श्रोताओं के दिल तक पहुंचती है. आज की हमारी विशेष साहित्यिक प्रस्तुति में हम आपका परिचय करवा रहे हैं एक ऐसी कवयित्री से जो हिंदी कविताओं की विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी के माध्यम से भावों और विचारों को अभिव्यक्त करती हैं. इनकी कविताओं में कहीं प्रेम और संवेदना है, कहीं प्रकृति का सौंदर्य, तो कहीं जीवन और समाज से जुड़े सवाल. आज हमारे साथ हैं पल्लवी रानी, हिंदी की जानी मानी कवयित्री जो विभिन्न विधाओं में कविता लेखन करती हैं. तो आइए सुनते हैं पल्लवी रानी की कविताएं उन्हीं की आवाज और उन्हीं के शब्दों में.

आकाशवाणी मुंबई के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं पल्लवी रानी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताओं के विविध रंग लेकर, जिसमें समाहित हैं बहुत सारी संवेदनाएं, भाव और रंगोली भावों की, जो निश्चित रूप से आपके हृदय को स्पर्श करेगी। मेरी पहली कविता जो मैं आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ, उसका संदर्भ कुछ इस तरह है कि अपने जीवन की आपाधापी में, अपने महत्वाकांक्षाओं को पाने की चाह में, हम अपनी सही खुशियों के नए अर्थ को ढूंढते हुए, जो सही खुशियां हैं उसको हम छोड़ जाने कहाँ आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं अपनी इस कविता के माध्यम से खुशियों का सही अर्थ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं। चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, न मुड़ के देखा न पूछा हाल, बरसों बीत गए खुद से मिले, न मुड़ के देखा न पूछा हाल, ख्वाहिशों की सड़क पर दौड़ते, पेशानी पर खिंच गई लकीरें और उम्र की सीढ़ी से झांकते सफ़ेद बाल। ख्वाहिशों की सड़क पर दौड़ते, पेशानी पर खिंच गई लकीरें और उम्र की सीढ़ी से झांकते सफ़ेद बाल, कोलाहल की ज्वालामुखी में धधकते सन्नाटों का चित्कार, झंझावतों में उठते मन के बयार, झंझावतों में उठते मन के बयार, कहीं से तो राहते ढूंढ लाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। कहीं से तो राहते ढूंढ लाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। कमरे में खड़ा वो आईना, कमरे में खड़ा वो आईना, कुछ गुमसा लगता है, नजरें चुराकर गुजरे कि कहीं खुद को

ना दिख जाए दिल का हाल। चलो ना आज आईने में खुद को देख मुस्कुराते हैं, चलो ना आज आईने में देख खुद को मुस्कुराते हैं, थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। तुम्हें याद है क्या वो आखिरी गाना, कभी सुनहरी सांझ तो कभी सर्द

अपने गीतों में भर लाना। सुनो ना आज फिर गुनगुनाते हैं, सुनो ना आज फिर गुनगुनाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। बहुत हुई ये आपाधापी, बहुत हुई ये आपाधापी, चैन न दिन को रातें जागी, पलछिन लम्हा मरता जाए, पलछिन लम्हा मरता जाए, सांस आस मन चैन न पाए। ऐसे में बेचैनियों को कहीं दूर छोड़ाते हैं, ऐसे में बेचैनियों को कहीं दूर छोड़ाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं। मुझे लगता है कि ये हम सभी की एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ से हम सभी बचकर नहीं निकल पाते। आगे की पंक्तियाँ सुनिएगा कि तैयारियाँ तो बहुत की, कमाया बहुत था गैर ज़रूरी या ज़रूरत कोई, था गैर ज़रूरी या ज़रूरत कोई, दिखावे की रस्म को निभाया बहुत, किरचें चकाचौंध की चुभती है नस नस में, किरचे चकाचौंध की चुभती है नस नस में, किस्ते चुकाते रहे उम्र भर, रहा खुद पे ही खुद का बकाया बहुत, किस्ते चुकाते रहे उम्र भर, रहा खुद पे ही खुद का बकाया बहुत, चलो अब थोड़ा जी आते हैं, चलो अब थोड़ा जी आते हैं, सब सीखे न सीखा जीना, थोड़ा जीना सिखाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, भागती दौड़ती सांसों को भी थोड़ी सांस आने देते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं, चलो थोड़ा ठहर जाते हैं।

और जब बात जिंदगी की आपाधापी की चली है, तो क्यों ना हम समझें कि आखिर जिंदगी क्या है, जिंदगी का संदर्भ क्या है, जिंदगी के सही मायने क्या हैं, इस पूरे जगत में कौन अपना और कौन पराया है, जिन चकाचौंध के पीछे हम भागते फिरते हैं उसकी असली सच्चाई क्या है। आइए अपनी अगली कविता के माध्यम से मैं जिन भावों को आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ उससे आप सभी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी चीज़ क्या।

धन्यवाद। जीवन पथ पर चलते चलते सुख दुख की छांव में हम जाने कितने झंझावतों से गुजरते हैं, कितनी परेशानियां, कितने संघर्षों का हम सामना करते हैं। और आज के इस भौतिकवादी परिवेश में जिस तरह का जो माहौल है, हम बहुत ही जल्द अवसाद में चले जाते हैं। आज के बच्चे हों या बड़े हों, सबका एक सा हाल है। तो क्यों ना उस निराशा को अपने मन से हटाकर हम प्रकाश की तरफ बढ़ें, प्रेरणा की किरण को अपने साथ लेकर हम जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। इसी उद्देश्य को लेकर मेरी अगली रचना है, जिसका शीर्षक है ये किस्सा है प्रयास का। असीम अंधकार में विपत्ति के प्रहार में, असीम अंधकार में विपत्ति के

मरुस्थलों के गाल में समय की उल्टी चाल में, मरुस्थलों के गाल में समय की उल्टी चाल में, जो पुष्प बन के खिल

ये उस हठीली श्वास का ये किस्सा है प्रयास का, ये किस्सा है प्रयास का। यदि वेग की बयार हो तमस जो रोके द्वार हो, यदि वेग की बयार हो तमस जो रोके

तो जब आप मझधार में खड़े हों तब हम क्या करें, ये सुनिएगा मेरी अंतिम पंक्तियों में। जो राहरों के आंधियां तुम खड़े मझधार हो, तो भर लो मन को जिसे, तो भर लो मन को जिसे हो जैसे सूर्य रश्मियां, तो भर लो मन को जिसे हो जैसे सूर्य।

0: प्रयास का धन्यवाद। जो बात चली है प्रेरणा और प्रयास की, अपने संकल्प और विश्वास की, तब भला उदासी मन के आंगन में क्यों छाई रहेगी? उदासियां कैसे दूर हों? अपने इन्हीं भावों को मैं कविता में सजा कर लाई हूं। हमें कहाँ से प्रेरणा मिल सकती है, किस किस तरह से प्रेरणा मिल सकती है, ये हमारे देखने के और समझने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो मेरी इन संवेदनाओं के साथ अपने आप को निश्चित रूप से आप सभी जोड़िएगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, सुनो उदासी क्यों है। बगीचे के फूलों ने मुझे आवाज लगाई और पूछा, सुनो उदासी क्यों है। बगीचे के फूलों ने मुझे आवाज लगाई और पूछा, सुनो उदासी क्यों है। इन प्यारी आंखों में उतर आई, ये जिंदगी तो तुम्हारी है नहीं चीज कोई पराई। ये जिंदगी तो तुम्हारी है नहीं चीज कोई पराई। देखो हमने रंग कितने उकेरे हैं, देखो हमने रंग कितने उकेरे हैं, हर ओर खुशबू के मेले हैं, हर ओर खुशबू के मेले हैं। यूं तो हम भी कल शाख छोड़ जाएंगे, यूं तो हम भी कल शाख छोड़ जाएंगे, मुरझा कर इस दुनिया से नाता तोड़ जाएंगे। यूं तो हम भी कल शाख छोड़ जाएंगे, मुरझा कर इस दुनिया से नाता तोड़ जाएंगे, मगर जाते जाते हर जर्रे में, मगर जाते जाते हर जर्रे में रंगीन खुशबुएं बिखेर जाएंगे, हर उदास दिल में सुकूने रंगत फेर जाएंगे, हर उदास दिल में सुकूने रंगत फिर जाएंगे। तो सुनो उदासी क्यों है, इन प्यारी आंखों में उतर आई, तो सुनो उदासी क्यों है। धन्यवाद।
1: आज की इस साहित्यिक यात्रा में अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने और अपनी रचनात्मक संवेदनाएं साझा करने के लिए पल्लवी रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है उनकी कविताओं के ये शब्द और भाव आपके मन में भी देर तक गूंजते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी मुंबई के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राजू कुमार भारती ने। इसी के साथ मुझे यानी दीपक केसावलेकर को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: हिंदी कार्यक्रम विविधा आत्ताच आपण ऐकलात। आपण ऐकत आहात AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी।

हाय गाइस, गुड इवनिंग। युवाओं के मन की बात को समझने वाली वाणी अर्थात युवावाणी के इस शानदार और जानकारी पूर्ण कार्यक्रम में मैं आपकी सहेली सुमेधा कुलकर्णी आप सभी का दहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, युवा मन में उमंग हो, आंखों में सपने हो और उन सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प हो तो सफलता की कोई मंजिल दूर नहीं होती। इस विचार के साथ आइए सुनते हैं आज का हमारा युवावाणी कार्यक्रम। फ्रेंड्स, आज के युवावाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे राहुल प्रकाश आत्राम इस युवा दोस्त से, जिनका चयन विश्व की प्रतिष्ठित लिनक्स फाउंडेशन LFX मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत रिस्क वे एक्सटेंशन लैंडस्केप के प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। तो आइए सुनते हैं आज के हमारे युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गुरु गोविंद सिंह जी अभियांत्रिकी तथा तंत्र शास्त्र संस्था विष्णुपुरी नांदेड़ में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहे युवा मित्र राहुल प्रकाश आत्राम का आप सभी की सहेली सुमेधा कुलकर्णी ने लिया हुआ साक्षात्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ है एक ऐसे युवा जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर न केवल अपने परिवार और संस्थान का बल्कि पूरे नागपुर और महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। नांदेड़ के श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान के अंतिम वर्ष के छात्र राहुल प्रकाश आत्राम का चयन विश्व की प्रतिष्ठित लिनक्स फाउंडेशन

0: LFX मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत RISC-V एक्सटेंशंस लैंडस्केप प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। दुनिया भर से आए लगभग 40,000 से अधिक आवेदनों में से भारत के केवल 150 छात्रों का चयन हुआ, जिनमें राहुल जी ने अपनी जगह बनाई है। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी इस प्रेरणादायक सफलता की कहानी। राहुल जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है और आपको इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हो आप? आपने इतना अच्छा सक्सेस जो प्राप्त किया है।
1: थैंक यू सो मच मैम। ये जो अभी अचीवमेंट हुई है, ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है, क्योंकि LFX मेंटी एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एक मोटिवेशनल फैक्टर है ताकि आगे भी मैं अपने चीज़ों को लेके एक अच्छे डायरेक्शन में जा पाऊँ। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस।
0: ओके,
2: बहुत बढ़िया।
0: राहुल जी, हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में आप बताइए कि लिनक्स फाउंडेशन LFX मेंटरशिप क्या है?
1: ओके, सो LFX मेंटरशिप लिनक्स फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप ग्लोबल प्रोग्राम है। इसमें जितने भी एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स और फ्रेशर लेवल के डेवलपर आते हैं जो अपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से अपने कोई भी एक एक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें बड़े लेवल की कंपनी के कोड बेसिस जो होते हैं उसमें डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमारा एक कोई बड़ी कंपनी है जो टेक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो लोगों को उस चीज़ के लिए मदद करती है, कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब जो कंपनीज है वो अपना पूरा कोड बेस और अपने प्रोजेक्ट्स जो हमने अभी आने वाले समय पे देना है, लोगों के सामने लाने हैं, वो प्रोजेक्ट्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे निकालती है जिसका नाम है लिनक्स फाउंडेशन, जो CNCF से एक कोलैबोरेटिंग फैक्टर होता है जो ये होस्ट करता है, और हम जैसे डेवलपर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स जिनको ये सारे इस पे इंटरेस्ट है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इस लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि सारी चीज़ें, वो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे लेवल पे निखर के आए। सो ये पूरा एक ये है। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा डीप डाइव लेके जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से इस पूरी चीजों के बारे में ये आए। तो अब जैसे मैंने बताया कि एक एक्सपीरियंस्ड और एक फ्रेशर अर्ली जो अपना करियर स्टार्ट करने वाले, उनके लिए एक बहुत अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे ये एक नॉर्मल इंटर्नशिप से बहुत अलग है क्योंकि वहाँ पे स्टाइमुलेटेड एकेडमिक प्रोजेक्ट से बेस्ड होता है। यहाँ पे आप पूरे एक कंपनी के कोड बेस पे रिसर्च करते हो और उसके बाद उधर कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो। उसके बाद ये पूरा 3 फेजेस पे चलता है, जनवरी से लेके मार्च, फिर अप्रैल से लेके जून, और उसके बाद अगस्त से लेके सितंबर। ये 3 फेजेस पे इसके एप्लीकेशंस खुलते हैं और स्टूडेंट्स या जो भी एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर है उसे ये इन स्टेजेस पे लेके अपना एप्लीकेशन देना पड़ता है कंपनीज के मेंटेनर्स और मेंटर्स पे। वो अब इनके जो भी प्रपोजल होते हैं मेंटरशिप के लिए वो इन्हें देखते हैं, स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि 12 वीक्स में यानी 3 महीने में ये इंसान हमारे कंपनी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इसके कंट्रीब्यूशन कितने अच्छे हो सकते हैं, उसमें से जो बेस्ट होता है उसका प्रपोजल सिलेक्ट होता है और उसको 3 महीने की, जिसे हम 12 वीक्स की कह सकते हैं, उसकी एक मेंटरशिप मिलती है, जिसमें जो कोड बेस के मेंटेनर्स होते हैं, जो कंपनी के हाई लेवल अथॉरिटीज होती है जैसे डायरेक्टर, इंजीनियर, उससे सीधा एक कॉन्टैक्ट मिलता है, उनकी सीधी मेंटरशिप मिलती है हम जैसे मेंटीज को जो वहां पे सिलेक्ट होते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड चलता है, जैसे चाइना, फ्रांस, यूरोप, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इसका एक बहुत अच्छा एक वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर भी मिलता है और बच्चों को इसमें बहुत सारी चीजें नई सीखने भी मिलती है।
0: ओके, हाँ जी। अब इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए आपका चयन कैसे हुआ और चयन प्रक्रिया कितनी चुनौतीपूर्ण थी, इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
1: अच्छा, चयन सिलेक्शन हमारा इस प्रकार हुआ कि जैसे आपने अभी मेंशन किया कि 40,000 स्टूडेंट्स बैठे थे वर्ल्ड वाइड, और वो बस स्टूडेंट्स नहीं थे, वो एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लेवल के भी और फ्रेशर्स जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के तरफ अपना पूरा डायरेक्शन बना चुके थे वैसे लेवल के वहाँ पे पूरे प्रोफेशनल्स थे। अब वहाँ पे हमें 3 एप्लीकेशंस मिलते हैं, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट पे या सेम प्रोजेक्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि आपके पास लाइफ टाइम में बस 3 ही अपॉर्चुनिटी रहती है, और इसमें अगर आपको एक्सेप्ट

0: हुआ तो फिर वो बस एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये एक उसमें ही प्रोबेबिलिटी में 1:99 का एक रेशियो आ जाता है, तो वो तो हम बोल ही सकते हैं। अब प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मेरी प्रोफाइल में हमारे जो मेंटर्स हैं वो इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद मुझे एक इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आया। और इंटरव्यू राउंड में भी बहुत सारे मेरे जैसे मेंटीज बैठे हुए थे, आई गेस 20 से 25 लोग मेरे ही तरीके के वहाँ पे बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद मेरा वहाँ चयन हुआ, मुझे वहाँ पे सिलेक्ट किया गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर थी, क्योंकि इट वॉज़ जस्ट लाइक अ वन टाइम चांस। और अगर मेरी बारे में बात करूँ तो मेरे 3 एप्लीकेशंस में से 2 रिजेक्ट हो चुके थे और ये आखिरी वाला था। तो मेरे लिए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हो गया।
1: अच्छा, आपने अभी बोला कि इंटरव्यू लिया गया,
0: जी
1: तो आपके इस इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था
0: जी
1: उसके बारे में क्या बताएंगे आप?
0: इंटरव्यू का ये एक्सपीरियंस ऐसा था, क्योंकि अब नॉर्मल इंटरव्यूज़ में, जैसे इसके पहले भी मैंने कंपनी के प्लेसमेंट्स के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, और कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शनल इंटरव्यू भी दिया था, मॉक इंटरव्यू टाइप का। तो इसमें मुझे इंटरव्यू देने का एक अच्छा खासा आइडिया था कि मैं कैसे अपनी बात को रख सकूँ, कैसे इंटरव्यूअर को अपनी बात से कन्विंस कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मैं जिसे इंटरव्यू दे रहा था वो लोग ही लाइक आउट ऑफ इंडिया के थे, सो देयर वे ऑफ टॉकिंग इंग्लिश एंड माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और डिफरेंट वे में जा रहा था। मुझे अभी भी याद है कि मेरे मेंटेनर्स और मेंटर्स जो है वो यूरोप के हैं, तो वहाँ पे उनकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक अलग वेरिएंट है जो हमें समझने के लिए थोड़ा बहुत तो भी टाइम लगता है। और उसमें फिर उन्हें एक पूरे कंपनी का एक पूरा कोड बेस, एक प्रोजेक्ट का कोड बेस एक्सप्लेन करना था। उनके इंटरव्यू में कोई बेसिक सवाल नहीं था जो ऐसे यूजुअल इंटरव्यूज में पूछते हैं। वहाँ पे हमें जो भी हमने वो प्रपोजल में लिखा हुआ है वो ही हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि आप ये चीज़ कैसे मेंशन कर सकते हो और ये चीज़ का फायदा क्या है। तो उस हिसाब से पूरा इंटरव्यू था।
1: राहुल जी, आपने जिस रिस्क वी एक्सटेंशंस लैंडस्केप प्रोजेक्ट के लिए चयन पाया है
0: जी
1: वह क्या है और उसका महत्व क्या है?
0: ओके, सो इस पे मैं आपको पहले तो रिस्क वी इंटरनेशनल की थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा, क्योंकि वही कंपनी का ये प्रोजेक्ट है। तो वो कंपनी करती क्या है, तो वो कंपनी एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जो ब्लूप्रिंट देती है अलग अलग कंपनीज को, जैसे जो चिप्स बनाती है, चिप्स बनाती है जो हमारे हार्डवेयर सिस्टम्स पे कंप्यूटर के यूज़ होते हैं, जैसे एनवीडिया हो गई, इंटेल हो गई, ये कंपनीज आप कहीं ना कहीं जानते होंगे। तो ये पूरी कंपनी का इसका ये ऐसा काम है। अब यहाँ पे हमारा जो ये प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, इसमें ये देखते हैं कि बहुत सारे जो आर्किटेक्चर सेट्स होते हैं उसमें एक डेवलपर जब उसके चिप को एड अप करता है, जैसे ये पूरा इंस्ट्रक्शन सेट फ्री होता है और ओपन सोर्स है तो कोई भी जाके यूज कर सकता है, तो जो भी आर्किटेक्चर में डेवलपर देखता है उसके पास पता नहीं होता कि कौन सा इसमें मेरे चिप को सबसे अच्छा काम देगा। जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे अपने चिप के लिए एक बहुत अच्छा कोई एक्सटेंशन देना है, कोई जिससे मेरी चिप एक लेवल ऊपर को ये करे। बट अब यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि इतने सारे एक्सटेंशंस में मैं कौन सा ऐसा एक्सटेंशन उठा के यहाँ पे लगाऊँ कि मेरे चिप के प्रोसेसर्स बहुत अच्छा चले, जो ऑप्टिमाइजिंग कैपेबिलिटी है, मेमोरी मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छे इससे ग्रो करे। तो इसमें ये प्रोजेक्ट हमें वही काम इजी करता है जो एक्सटेंशन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है। इसमें मैपिंग होती है कि अगर मैं एक डेवलपर हूँ, मैं इनके वेबसाइट में या इनके ओपन सोर्स में कहीं गया और मैंने देखा कि मुझे ऐसा मेरे स्पेसिफिकेशंस है, मेरे कोई हार्डवेयर सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसके ऐसे स्पेसिफिकेशंस है, आप मुझे बताइए कि कौन सा देना चाहिए। तो वो खुद से ही आपको आके ये उसकी इंडिविजुअलिटी, उसके एडवांटेजेस, उसकी अच्छी चीज़ें बता के आपको वो दे देगा। तो ये उस चीज़ के ऊपर का पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशंस होते हैं वो अच्छा होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस अच्छे होते हैं जो चिप्स के बेसिकली। तो हमारा काम वही है कि हम इसे हार्ड कोड करके वहाँ पे दे सके।
1: राहुल जी, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की ओर आपका रुझान कैसे बना, इस बारे में क्या बताएंगे
0: जी,
1: आप?
0: अब जैसे फर्स्ट ईयर से कॉलेज स्टार्ट हुआ था, अब मैं आपको पूरा एक थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा इस बारे में।
1: ओके ओके
0: तो फर्स्ट ईयर से जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था, ओपन सोर्स के बारे में हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, एंड हमारे सीनियर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें करते थे, और हम तब उतने एडवांस नहीं हुए थे कि हम उनसे जाके पूछ ले कि भैया ये क्या है, हमें भी
1: ओके
0: बताइए। तो कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर से चालू हुई, सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं ध्यान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तरफ बढ़ा, उसमें डी एस ए प्रैक्टिस, मर्न स्टैक, ऐसी चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान अच्छा आया। फिर धीरे धीरे जब सीनियर्स के साथ हमने बातें करना चालू की, उन्हें हमारी चीज़ें बताई कि भैया हम ये कर रहे हैं, हमें और क्या करना चाहिए, तो सीनियर्स ने कहीं ना कहीं ये गाइडेंस दी कि तुम ओपन सोर्स में भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी तुम्हारा एक अच्छा हो सकता है। और सीनियर्स ने कहीं ना कहीं हमारा ये ध्यान यहाँ से यहाँ पे खींचा, जो अब हम भी कर रहे हैं हमारे जूनियर्स के लिए। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का वे क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो ये अब एक अर्ली प्रोफेशनल जो एक स्टूडेंट है उसको खुद से तो नहीं आ सकता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, देखना चाहिए कि आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे सीनियर से बात करके हमें ये ध्यान में आया।
1: अच्छा
0: जी
1: राहुल जी, आपने अच्छा सक्सेस प्राप्त किया है,
0: जी
1: तो इस सफलता के पीछे किन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है और आप किसे इस सफलता का श्रेय देना चाहेंगे?
0: सो इस सफलता के पीछे ऑब्वियसली पेरेंट्स, सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि जैसे सीएसई में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड अभी इतनी डाइवर्स हो गई है कि एआई, मार्केट ट्रेंड और बहुत सारी चीज़ें अब नई आ चुकी है।
1: या
0: हम जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किए थे तो हमारा कुछ वे ऑफ थिंकिंग अलग था, अभी हमारा वे ऑफ थिंकिंग बहुत डाइवर्स हो गया है, और इसमें थिंकिंग, मोटिवेशन, ये सब बनाए रखने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती है थ्रू आउट द टाइम। बट पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं कभी भी इस चीज़ को हमें उस चीज़ पे हमें डीमोटिवेट नहीं होने दिया, और हमेशा कुछ भी उन्हें नया लेके बता दिए कि हम आज ये कर रहे हैं, मैं आज ये कर रहा हूँ, तो हमेशा उसमें मोटिवेशन दी। तो कहीं ना कहीं इसका तो पूरा पूरा श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा, और उसके बाद हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे टीचर्स, जो हमारे लेक्चरर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाने के साथ साथ दे ऑल्सो मोटिवेट अस कि तुम आगे की चीज़ें भी देखते रहो। तो हमारा एकेडमिक भी कहीं ना कहीं सिक्योर हुआ उसके साथ, और ये चीज़ें भी उसके साथ आते गई हमारे
1: ओके
0: साथ। जी
1: अच्छा राहुल जी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इस तरह की तैयारियां, जैसे कि अलग अलग प्रोजेक्ट में आप सहभागी हुए हैं,
0: जी
1: तो इसके बीच में आपने अपने समय का संतुलन कैसे बनाया?
0: तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और ये जो अलग अलग चीज़ें थी, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें कॉलेज के करिकुलर में है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इससे जुड़ी हुई है, और हमें बहुत ज़्यादा हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता रहता है। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो स्टूडेंट खुद से करता है, उसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी था, जो हमें पहले बहुत दिक्कत आई, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जब इसे अपना गोल बना दिया कि एटलीस्ट इसे निकाल के रहेंगे, तो उसके बाद फिर हमने उस चीज़ को उस डायरेक्शन में लेके गए, और उसके बाद वो चीज़ उसमें हो गई। बस इतना है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इसका साइमल्टेनियसली था, अगर 6 घंटे का मेरा टाइम स्लॉट है या 7 घंटे का है, तो उसमें से 3 साढ़े 3 घंटे में एक चीज़ करूंगा, और उसके बाद 3 साढ़े 3, मतलब 50-50 टाइम डिवीजन था। कभी भी पढ़ाई को हटा के ये चीज़ें नहीं की, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं अपने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे हम ये सारी चीज़ों के लिए एज अ स्टूडेंट हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं यही था, और समय का संतुलन बनाना कठिन था, लेकिन कहीं ना कहीं हो गया।
1: राहुल जी, क्या इस सफर में कभी ऐसी कठिनाइयां आई जब आपको लगा कि आगे बढ़ना मुश्किल है? आपने इस कठिनाई का सामना कैसे किया?
0: इस सफ़र में अगर मैं आपको अपने इससे स्पेसिफिकली बताऊँ, तो ये पूरा मैंने 9 महीनों के लिए अपना टाइम इस पे पूरा दिया था। तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई, क्योंकि 3 एप्लीकेशंस थे, उसमें हर एप्लीकेशंस में मेरा दिल लगा हुआ था कि ये एक्सेप्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए, और जब पहला एप्लीकेशन मेरा रिजेक्ट हुआ, तो आई गेस आया थोड़ा बहुत कि हाँ ये क्यों हुआ। जब अब इसमें आप आपको मैं पूरा एक सफर बताऊंगा। जैसे कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करता है तो वो इंसान अपना जो थिंकिंग है उसकी वो प्रोजेक्ट के लिए वो अपना रखता है बहुत लोगों के सामने। अब किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो शायद कहीं ना कहीं वो सामने वाले को वो आइडिया पसंद नहीं आया, वो वहीं पे उसे मिटा देता है कि ये इससे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको अपना मतलब आपका टाइम ये करे, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो मोटिवेशनल फैक्टर भी बनी, क्योंकि अगर आपको समझ आ रहा है कि ये पूरा कोड बेस है कैसा, तो आप उस पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे

धीरे धीरे धीरे धीरे आप उस पर कमांड ले सकते हो, आप सामने वालों को भी बता सकते हो कि मेरा सोचने का तरीका क्या है और हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। तो कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसका चीज़ें जो मैंने उससे सामना कैसे किया, तो सामना इसी से किया कि पेशेंस। जब जब मेरा एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते थे, जब जब मेंटेनर्स ऐसा बोलते थे कि ये आइडिया मुझे इतना अच्छा नहीं है, मैं पेशेंस, फिर से एक नया आइडिया, थोड़ा एक दो दिन का फिर से रिसर्च करके एक नया आइडिया, और

0: से पहले
1: सहभागी हुए हैं।
0: तो इसके बीच में आपने अपने समय का संतुलन कैसे बनाया?
2: तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और ये जो अलग अलग चीज़ें थी, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें कॉलेज के करिकुलर में है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इससे जुड़ी हुई है और हमें बहुत ज़्यादा हमारे प्रैक्टिकल सेशंस में कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता रहता है। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो स्टूडेंट खुद से करता है, उसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी था, जो हमें पहले बहुत दिक्कत आई, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जब इसे अपना गोल बना दिया कि एटलीस्ट इसे निकाल के रहेंगे, तो उसके बाद फिर हमने उस चीज़ को उस डायरेक्शन में लेके गए और उसके बाद वो चीज़ उसमें हो गई। बस इतना है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई और इसका साइमल्टेनियसली था। अगर 6 घंटे का मेरा टाइम स्लॉट है या 7 घंटे का, तो उसमें से 3-3.5 घंटे में एक चीज़ करूंगा और उसके बाद 3-3.5, मतलब 50-50 टाइम डिवीजन था। कभी भी पढ़ाई को हटा के ये चीज़ें नहीं की, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं अपने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे हम ये सारी चीज़ों के लिए एज अ स्टूडेंट हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं यही था और समय का संतुलन बनाना कठिन था, लेकिन कहीं ना कहीं हो गया।
0: कौन से भी कार्य में सफलता आपको जब प्राप्त करनी होती है, तो हमें पेशेंस से काम लेना बहुत जरूरी
2: जी,
0: है
2: जी,
0: तभी
2: जी।
0: हम हमारे कार्य में सफल हो सकते हैं
2: जी।
0: राहुल जी, 12 सप्ताह की इंटरनेशनल मेंटरशिप के लिए आपका चयन हुआ है
2: जी।
0: तो इस मेंटरशिप से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
2: तो अपेक्षाएं मेरी इस चीज से ऐसी कि कहीं ना कहीं जब ये पूरे 3 महीने ख़त्म हुए, लाइक जब मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करूँ जिस हिसाब से मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक हफ्ते मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहेगा और इन दी एंड हमारे प्रोजेक्ट में ये सफलता हो सकती है, लाइक वो पूरा प्रोजेक्ट अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊँ तो अभी थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है और इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं वो वहाँ पे रखे है कि इसे सही कैसे कर सकते हैं। मेरा जो काम है वो एक्सटेंशन मैपिंग हैंडलिंग में है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत जो भी एक्सटेंशंस होते हैं उसमें प्रॉपर वे में उसे ऑर्डर करना और उसे यूजर्स को अपने टाइम और डेटा सेट के हिसाब से देना, ये हमारा काम है। तो ये इस पर जब ये चालू है, जैसे अभी ये पूरी प्रोसेस चालू है, तो इस पर मेरा अभी का ये मानना है कि मैं इसे बहुत प्रॉपर तरीके से करूँ, ताकि बाद में जब भी मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली या कभी मुझे खुद का भी कुछ काम करना है, अगर खुद का भी कोई स्टार्टअप करना है, तो मुझे ऐसी दिक्कतें ना आए जो यूजुअली आती है। अब इसके बाद का क्या है, तो इसके बाद का जब मैं आगे कोई कंपनी के लिए बैठूंगा या आगे कुछ भी करूँगा, तो एक स्टेप कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ आगे लेके जाएगी, तो यही अपेक्षा है।
0: ओके राहुल जी, भविष्य में आपका जो एम है आगे, वो क्या है? आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
2: जी, सो एज एन CSE अंडर ग्रेजुएट मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसमें मुझे अभी उसी चीज़ का एक बहुत ज़्यादा ये था कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुले, और जिस हिसाब से मैंने ये चीज़ पे उपलब्धि हासिल की है, तो आई गेस और चीज़ें नई नई आते जाएगी।
0: ओके राहुल जी, आज के विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
2: जी, तो मैं इसे अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्त जैसा एक मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आ चुका हूँ, इतना इजी नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि एकेडमिक्स मेंटेन करना, प्रैक्टिकल सेशंस एंड ऑल, और उसके बाद फिर अपने लिए कुछ अलग देखना जो इतना कॉम्पिटिटिव है, जो आपको मोर देन इम्पॉसिबल लगे, बट जैसे मैंने पहले बोला कि पेशेंस, इस चीज़ में भी जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे आसपास के लोग बोल रहे कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, तुम्हारा नहीं होगा, ये करके कोई फायदा नहीं है, अपने पढ़ाई पे लगो। तो ये सारी चीजें ना सुन के अनसुना करे और अपने जो आपको सही में करना है उस पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। और प्लस जैसे आज मुझे मौका मिला कि मैं ये चीजें आपको बता पा रहा हूँ, तो बताने के लिए भी एक साधन है और मेरा अंदर का एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे कुछ आप लोगों को कन्वे करना है। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैं आपको ऐसा एडवाइस दूंगा कि इन चीज़ों पे भी बहुत अच्छा काम करिए, क्योंकि जब आपका कोई भी एक गोल है, जैसे आपको कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, आपको खुद की एक कंपनी सेटअप करना है, आपको सबसे पहली चीज़ लगेगा कॉन्फिडेंस। उसके साथ आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है ताकि आप सामने वाले को कन्विंस कर सके, और ये छोटी मोटी चीज़ें जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम गिन लेते हैं, लेकिन जो कहीं

0: कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, हम उसे ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं देखते हैं। जैसे अगर आज मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा ठीक है कभी और सीख लूंगा, लेकिन जब तक सीखूंगा नहीं तब तक मैं करूंगा नहीं। सो दैट इज़ द थिंग। आप थोड़ा थोड़ा दिन का इसे दीजिए, काम करिए, हर एक चीज़ में अलग अलग अपना थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो इसका मतलब थोड़ा सा रुकिए, और अगर बहुत कुछ करके भी रिजल्ट नहीं मिल रहे तो सोचिए कि वो चीज़ आपके लिए थी नहीं, कुछ और चीज़ देखिए उसमें हो जाएगा।
1: राहुल जी, हमारे सभी के जीवन में तीन
0: जी
1: चीजों का बहुत महत्व है। एक हमारे माता पिता,
0: जी
1: एक हमारे गुरुजन,
0: जी जी
1: और एक हम जिस संस्थान से एजुकेशन
0: जी
1: लेते हैं
0: जी
1: वो संस्थान।
0: जी
1: तो अंत में क्या आप अपने माता पिता, शिक्षकों और अपने संस्थान के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल। माता पिता के लिए तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आई एम सो ग्रेटफुल कि आप इतने ओपन माइंडेड हैं कि मैं कुछ भी नया चीज़ करने जाता हूँ या कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने जाता हूँ तो आप कभी रोकते नहीं है या ऐसा नहीं बोलते कि नहीं होगा। आप हमेशा उसमें ये बोलते कि करके देख, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही चीज़ है जो मोटिवेट करती है। अगर अब मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो मैं 1 साल के लिए सेक्रेटरी था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का अपने कॉलेज का, जिसमें मेरे साल में मेरे सर्विंग में बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड हमने सेट करके रखे हैं कॉलेज में। और कहीं ना कहीं उससे जो पर्सनालिटी, जो स्किल्स, जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है इंसान में, वो कहीं ना कहीं डेवलप हुई। मेरे पेरेंट्स का उसमें भी बहुत अच्छा योगदान था और यहाँ पे भी एक योगदान है, और आगे भी मुझे पता है कि वो कोई चीज़ से रोकेंगे नहीं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा उन्हें एक थैंक यू और एक ग्रेटफुलनेस है। एंड अपने शिक्षकों के लिए, जो टीचर्स मुझे अपने कॉलेज में भी मिले, जो टीचर्स अभी तक हमें गाइड करके आए 11th 12th और अपने स्टडीज़ से लेके 1st से लेके 10th तक, टीचर्स में मैंने एक चीज़ देखा कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल फैक्टर ड्रिवन टीचर्स मुझे अब तक मिले। कभी भी ऐसा डिमोटिवेशन नहीं किए कि अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं आता तो फिर आपको कुछ नहीं आता, ये एटीट्यूड कभी मेरे टीचर्स का था नहीं। एंड दैट वॉज द थिंग कि मुझे आज बहुत सारी चीज़ों में डर नहीं है। मैं कल कुछ करने भी जाऊंगा, अगर फेल भी हो जाऊंगा तो उसमें मुझे डर नहीं है कि मेरा हुआ नहीं। तो जैसे अभी आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पे बैठा था फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है AIR के साथ, सो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि कुछ अलग ऐसा ना बोल दूँ, कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ निकल ना जाए मेरे मुँह से, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनकी बातें याद आ गई कि कोई नहीं, हो जाएगा। और
1: सही
0: अपने
1: है।
0: संस्थान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज मेरे लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जैसे एक मेरे अंदर से जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, एक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक लीडरशिप क्वालिटी, कहीं ना कहीं वो नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड, ये सब कहीं ना कहीं दबा हुआ था और ये कॉलेज ने उसे निखारा है, और मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और इन दी एंड मैं थैंक यू से ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत ही बड़ा वाला थैंक यू इन सबको।
1: सही है राहुल जी, आपने अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे दोस्तों के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए और सीखने की लगन बनी रहे, तो दुनिया का कोई भी मंच दूर नहीं रहता। हमें विश्वास है कि आप भविष्य में भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच।

फ्रेंड्स, अभी आपने युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुना श्री गुरु गोविंद सिंह जी अभियांत्रिकी तथा तंत्र शास्त्र संस्था विष्णुपुरी नांदेड़ में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहे युवा मित्र राहुल प्रकाश आत्राम का आपकी सहेली सुमेधा कुलकर्णी ने लिया हुआ साक्षात्कार। हमारे राहुल आत्राम इस दोस्त का चयन विश्व की प्रतिष्ठित लिनक्स फाउंडेशन LFX मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत रिस्क वी एक्सटेंशन लैंडस्केप के प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। तो आशा करती हूँ आप सभी को युवावाणी का आज का ये कार्यक्रम

0: आताच आपण युवकांसाठीचा युववाणी हा कार्यक्रम ऐकला.
1: माझा आभार माझा शिवार या कृषीविषयक राज्यस्तरीय प्रसारणात ऐका. जनावरांसाठी निकृष्ट चाऱ्याची गुणवत्ता वाढविणे या विषयावर डॉक्टर महेश जावळे यांची मुलाखत. सोबतच ऐका शेताच्या बांधावर या मालिकेत प्रगत शेतकरी प्राची मिरासे यांची मुलाखत. हा कार्यक्रम येत्या सोमवारी म्हणजेच 14 सप्टेंबर 2026 रात्री 7:30 आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून प्रसारित केला जाईल.
0: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 kHz आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 6 आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून हिंदीतून बातम्या आणि 6:05 इंग्रजीतून बातम्या प्रसारित होतील. त्या आम्ही सहक्षेपित करू.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले 2 की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है. श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
2: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने 3rd दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है. प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी. उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की. इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स SME सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है. प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
3: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सोल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं. ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है. वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की. श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे. श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की. उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया. श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे. उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news is read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. He said this during his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability at the Bharat Mandapam in New Delhi. Mr. Modi hoped that the New Delhi Declaration adopted at BRICS summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver लास्ट माइल इंपैक्ट।
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
4: Saying that BRICS is poised to enter its third decade, Mr. Modi asserted that the world now expects concrete results from the grouping and not just ideas and commitments. He expressed confidence that BRICS will certainly live up to these expectations through collective efforts. Prime Minister extended his best wishes to China as the next chair of BRICS. Earlier, addressing the open session of BRICS summit, Prime Minister Modi said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with world leaders on the sidelines of the BRICS summit 2026. He met President of Kazakhstan Kasym Zomart Tokayev and reviewed the progress in bilateral relations. The two leaders reviewed cooperation in a range of areas including politics, trade, defense and security, connectivity, energy, critical minerals, emerging technologies and creative economy and people-to-people ties. The Prime Minister also held a meeting with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi. In a social media post, Mr. Modi said the two leaders discussed various issues, particularly regional developments and the India-Egypt partnership, which has been growing significantly in recent time. Mr. Modi also held talks with Philippines President Ferdinand R. Marcos Jr. He welcomed the Philippines' participation in the BRICS summit as the current ASEAN chair. External Affairs Minister Dr. H. Jaishankar held a meeting with Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. The two leaders exchanged views on regional and global developments and discussed ways to further advance bilateral cooperation between India and Saudi Arabia. Finance Minister Nirmala Sitharaman met Uzbekistan's Deputy Prime Minister and Minister of Economy and Finance Jamshid Kochkarov in New Delhi on the sidelines of the BRICS summit. In a social media post, Ms. Sitharaman said during the meeting, both sides discussed strengthening bilateral economic and financial cooperation and exchanged views on areas of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that the nature of the diamond trade is changing with the emergence of lab-grown diamonds. He said that the lab-grown diamonds market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. In hockey, India's women's team has won the Junior Asia Cup title for the third consecutive time. The defending champions defeated China 1-0 in the final at Moshi in China this afternoon. Sanika Chandrakant Mane scored the only goal of the match in the 17th minute to help India secure the victory. With this triumph, India completed a hat-trick of Junior Asia Cup titles, having also won the championship in 2023 and 24. In men's cricket, India will begin the three-match 2020 international series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi this evening. The match will start at 7 p.m. Indian time. And in the Women's T20 Asia Cup cricket final, India will face defending champion Sri Lanka in Dubai today. India are the most successful team in Women's Asia Cup history with 7 titles. And with that, we end this news bulletin.
0: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 6:10 झाली आहेत. आता चित्रपट संगीताचा गीतबहार कार्यक्रम ऐकूया. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जैतरी जैत चित्रपटातलं आशा भोसले रवींद्र आणि सहकाऱ्यांनी गायलेलं गाणं ऐकूया. या गाण्याचे बोल लिहिले आहेत नादो महानोर यांनी आणि गाण्याला संगीत दिलं आहे पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी.

0: आदौ मुख्याः वार्ताः। ब्रिक्स संघः न तावत् केवलं राष्ट्राणां परिगणित समुदायमात्रः, अपितु वैश्विक विषमतानां परिहाराय एका अनन्यथा सिद्धा समाधान पारिस्थितिकी प्रणाली वर्तते इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवदिल्ली घोषणापत्रं ब्रिक्स देशानां भावि सहयोगस्य अबाधित मार्गदर्शकम् इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य आह्वानम्, प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्र उत्पादन श्रृंखला भारतस्य प्रभुत्वे एव अवचिन्ना तिष्ठेत्। अपि च दुबई नगरे निवर्त्यमानायाः T20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः चरमे सोपाने अद्य भारतं श्रीलंका दलेन सह पक्ष प्रतिपक्ष भावेन सम्मुखी भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् ब्रिक्स न केवलं राष्ट्राणां समूहः, अपितु समाधानानां किञ्चन पारिस्थितिकी तंत्रमस्ति। विगत दिनद्वयस्य गहन चर्चाभिः अयं दृढविश्वासः अधिकः सुदृढः जातः। सुदृढता, नवाचारः, सहकारः, सतत विकासश्च इत्यादिषु विषयेषु आयोजिते ब्रिक्स सत्रे स्वकीय समापनाभिभाषणे श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् शिखर सम्मेलने अंगीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकाशित दृष्टिकोणेन भविष्यत् सहकाराय च स्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। तेन सर्वाणि परिणामात्मक लक्ष्याणि समयबद्ध कार्येषु परिणामयितुं, अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च आवश्यकता प्रतिपादिता। सः प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स प्रारूपं केवलं अभिलेखीकरणं विहाय वास्तविक जीवने प्रत्यक्ष प्रभावं उत्पादयितुं सदस्य राष्ट्राणि परस्परं मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: ब्रिक्स संघटनम स्वकीय तृतीय दशके प्रवेष्टुं सज्जमस्ति इति निरूपयता श्रीमोदिना दृढतया प्रतिपादितं यत् संसारः अधुना एतस्मात् समूहात् केवलं विचारान् प्रतिश्रुतिः न, अपितु मूर्त परिणामान् अपेक्षते। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् ब्रिक्स संघटनं सामूहिक प्रयासैः एतासु अपेक्षासु अवश्यमेव सत्यं सिद्धं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आगामी अध्यक्षत्वेन चीनदेशाय शुभाशयाः समर्पिताः। तेन नवदिल्ली

0: दुपारी 12 वाजता वनिता मंडळात अस्मिता वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरही.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया. प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए. इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता. भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता. और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी. वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने. अब समाचार विस्तार से. नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे. 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है.
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है. पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है.
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने 3रे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है. प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी. इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए.
2: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं. ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है. वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: 2 दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा. इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे. ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया. पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया. साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया. इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की. नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है. साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी. यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा. पश्चिम एशिया की स्थिति

0: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने

0: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई परिवर्तन किए हैं।
6: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से

0: की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champion Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. Now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, "BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions." He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
4: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
3: Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
4: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
3: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. We have a report from our correspondent.
5: The two-day summit focused on resilience, innovation, cooperation and sustainability with more than 50 practical outcomes. The summit deliberated on major global and regional issues, including global governance reform, international trade, terrorism, peace and security, artificial intelligence, climate change, healthcare and sustainable development. The leaders supported a stronger cooperation in pandemic preparedness and integrated early warning system for infectious diseases. On the situation in West Asia, BRICS leaders called for maximum restraint, dialogue and diplomacy and stressed the need to protect civilians and civilian infrastructure. The leaders strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations and reiterated their commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism. The New Delhi Declaration is expected to pave the way for enhanced BRICS cooperation in economic development, technology, healthcare, climate action and global governance, while strengthening the voice of the Global South. This summit was highly significant from the perspective of global politics, the economy and multilateral cooperation. The discussions on the situation in West Asia and issues related to international peace and security made it clear that BRICS is no longer merely a platform for economic cooperation, but its role in the global political discourse is also steadily expanding. With BRICS team, this is Ankit Kumar for Akashwani News, Delhi.
3: The External Affairs Ministry today said the BRICS summit, which concluded in New Delhi today, produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela, said that more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement of India's BRICS chairship.
6: India's chairship has focused on deliverables. The summit has endorsed a substantial package of outcomes across our 4 priority pillars. There are concrete over 50 outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's chairship this year.
3: Mr. Dalela said the summit also received reports from the BRICS Business Council and the BRICS Women's Business Alliance, bringing the perspectives of businesses, particularly women entrepreneurs, directly to the leaders. He said Prime Minister Narendra Modi delivered the closing remarks at the conclusion of the open session.
6: In his closing remarks,

0: दाना।
1: आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार सुमित लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
0: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include Sangeet Ratan Samman, Kala Nidhi Samman, Swar Sadhak Samman, and Rashtriya Kala Gaurav Samman.
1: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वह अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
0: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi, and taal kacheri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation, and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
1: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पदम अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
0: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Rag Rageshwari, wherein Alap is followed by Jod Alap, Jod Jhala, and then Vilambit Gat in Teen Taal, Madhyalay Gat in Mat Taal, and Drut Gat is in Teen Taal.

0: ये था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग तेज। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य, लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम विल नाउ प्रेजेंट राग देस। आलाप इज फॉलोड बाय मध्य लय गत एंड द्रुतगत इन तीन ताल।

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जलंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of आकाशवाणी जलंधर।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है।

0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market, in terms of volume, is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. India has condemned the attack on the commercial vessel MT Algaya off the coast of Oman today. In a statement, the Indian embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. President Draupadi Murmu has extended greetings on the eve of Ganesh Chaturthi. In her message, the president said that Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity, and auspicious beginnings. President Murmu prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace, good health, and prosperity into everyone's lives. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the 3-match series in Delhi tonight. Chasing a target of 157 set by Afghanistan, India scored 157 for 3 in 13.4 overs. Earlier, Afghanistan made 156 for 8 in their stipulated 20 overs. In hockey, India's men's and women's teams have clinched the Junior Asia Cup titles at Mochi in China today. Both the Indian men's and women's teams have also qualified for the Junior Hockey World Cup by winning their respective Asia Cup titles. And that is the end of this news bulletin.